आप कौन हैं आप मेरा ध्यान रखें पहले दिन रिबन से ऐसी बंसी बजाई है क्या नहीं जो अभी तक मेरी ड्यूटी टाइट है।